आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: तू लव करती है ना मेरे से? बस लव है तो सब है।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:09।
1: Bollywood.

0: Friday blockbuster to start this Friday 7:13 on this 31st of July.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: एक तो हफ्ते का आखिरी दिन, तो ऑफ कोर्स जब भी कोई फ्राइडे होता है तो यू डू बिट ऑफ अ मेंटल रिव्यू ना कि कैसा रहा मेरा हफ्ता, व्हाट वेंट राइट व्हाट वेंट रॉन्ग. या ये तो आदतन हम लोग करते हैं, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट. बट आज के दिन पूरे महीने का रिव्यू कैसा रहा भाई, जुलाई का महीना, वाज इट लाइक डिड इट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस और वाज इट अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज वी आर लाइक नाउ क्लोजर टू 2027 देन वी आर टू 2025. सो लाइक 6 months, 7 months ऑलरेडी इन टू द ईयर, मतलब सिर्फ 5 महीने बचे हैं इन द ईयर 2026. या सो हाउज दैट एज अ थॉट टू किक स्टार्ट दिस डे कमिंग अप. है जवानी तो इश्क होना है से चुनरी चुनरी लेट्स गो वर्जन. Any version of any song that you want to listen to that gets you up and running, recharges your batteries like no other song, then let me know. WhatsApp KJ 054-309-1062. That's my number, 054-309-1062. This is Big 106.2 and we are the beat of Bollywood. Good morning.
1: Big 106.2.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a

0: 7:23 on the clock on this 31st of July. This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: आज के मस्ती के मेनू कार्ड में क्या क्या है? It is the other Sonu's birthday today. यार ये क्या क्या है? 30th को सोनू निगम, 31st को सोनू सूद. So yeah, सोनू सूद का बर्थडे आज. कियारा अडवाणी is also listed as a birthday star today. दृश्यम is the film that turns 11. 11 साल हो गए दृश्यम को 31st of July 2015 में. अजय देवगन kind of marked one of his, I think, what, turning points in his career. Also, Dhamaal 4 has crossed 200. Kya chal kya raha hai yaar? That's how much we were craving a proper Bollywood slapstick comedy, right? 215 crore क्रॉस कर लिया है. ऑल्सो एवरीबडी टॉकिंग अबाउट, स्टिल टॉकिंग अबाउट द रामायण का ट्रेलर, कि कौन होने चाहिए कौन नहीं होने चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ सनी देओल वर्सेस विवेक ओबरॉय. आई टेल यू व्हाई एंड हाउ इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज बिग 106.2. पति पत्नी और वो दोस्त से कमिंग अप. रूप दियो रानी. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फनी एशिया नेटवर्क.
2: मैं गुंडा कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम. शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं.
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood. क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में. 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
3: यू आर जस्ट वन कॉल अवे From your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800 Alfred 24/7.
4: The biggest pizza deal of the season is here. UAE, get ready for Papa John's Mega Week. For 1 week only, from the 29th of July to the 4th of August, buy one large or medium pizza and get another free. Same value, double the pizza. It's the ultimate pizza sale you don't want to miss. Available on the Papa John's app, plus dine-in and takeaway. Don't wait. Download the Papa John's app. Mega Week, 1 week only. Better ingredients, better pizza. Papa John's.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: बर्फ तो नहीं भाई, बट डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कहीं पर ओले पड़ गए, कहीं पर बारिश हो गई, तो 3rd of August तक, अगले 3-4 दिन तक इट्स गोना बी अनप्रेडिक्टेबल वेदर। दैट्स व्हाट द एमसीएम हैज ऑलरेडी सेड। 36 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 59%, विंड्स ब्लोइंग एट 11 किलोमीटर्स पर आवर। इट्स बीन अ पार्टली क्लाउडी स्टार्ट टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग स्टार्ट। हाईज ऑफ 41 and lows of 35 degrees Celsius right now.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: पति पत्नी और वो दो, आई होप के आप चारों यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड. लेकिन वीकेंड आने में कुछ घंटे अभी बचे हुए हैं.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: और कल मेरे से एक गलती हो गई, तो इट्स नेवर टू लेट टू सुधार हुई गलती. आई मिस्ड गौरव्स मैसेज. कल उन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट की थी, सो आई काइंड ऑफ व्हाट्सएप्ड हिम बैक के गौरव सॉरी आई मिस्ड योर मैसेज. आज सुन रहे हो क्या? तूने हाँ, अरे अरे मैं सुन रहा हूँ. सो गौरव ने जो कल गाना रिक्वेस्ट किया था वो मैं आज प्ले करने वाला हूँ, बिकॉज ऑल्सो एक वेस्टेड इंटरेस्ट इसके अंदर है, बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एज वेल. टेक अ बिट ऑफ लिबर्टी गौरव, आपने भाग मिल्खा भाग का टाइटल ट्रैक मांगा था, बट मैं इसका रॉक वर्जन आपको सुनाऊँ. इट इज just too good yaar, mind blowing. Yeah, this is the first hour of the show, which is the early morning request hour. Gaurav ke tarah aap bhi WhatsApp karo 0543091062. That's the number 0543091062. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: बिग 106.2 पर दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड एंड हम लोग खेल रहे हैं कुछ भी नहीं हम लोग कर रहे हैं आपके रिक्वेस्ट प्ले
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: The reason I got a bit confused was because कभी-कभी एक कुछ ऐसी न्यूज स्टोरीज आप देख लेते हो जिससे कि आपको लगता है यार ये सही में बात कर रहा है बंदा या मजाक कर रहा है क्या है. देर इज इंग्लिश विलेज क्रिकेट हाँ जहाँ पर आजकल कुमार संगकारा भी खेल रहे हैं सो बिल्कुल हल्के में नहीं लेगा कोई भी. या इफ यू हैवंट हर्ड दैट ही इज एक्चुअली डूइंग दैट. कुमार संगकारा को क्रिकेट से इतना प्यार है कि वो रिटायर ही नहीं हो पा रहे हैं. ही इज गॉन एंड स्टार्ट प्लेइंग विलेज क्रिकेट बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. बट क्या हुआ विलेज क्रिकेट में एक मैच बहुत ही वायरल हो गया है बिकॉज पिक्चर दिस मतलब राइट आर्म ऑफ स्पिन बंदे ने बॉल डाला बैट्समैन ने बॉल मिस कर दी द पर्सन द फील्डर स्टैंडिंग इन स्लिप्स उसने अपनी उंगलियां को चुटकिया ही क्रैक्ड हिज नकल्स सो हार्ड एट जस्ट द राइट टाइम कि अंपायर को लगा कि उसने निक कर दिया है एंड ही गेव द बैट्समैन आउट. मतलब देयर आर सो मेनी लेवल्स of amazingness out here कि यार वो टाइमिंग ऑफ क्रैकिंग इज नकल्स इतनी लाउडली कैसे नकल आप क्रैक कर सकते हो कि इस फील्ड के थ्रू अंपायर को सुनाई दे. लेकिन ऐसा हुआ अंपायर गेव हिम आउट ऑल दो बैट्समैन यू नो वॉज प्रोटेस्टिंग बट द अंपायर ने उसकी एक नहीं सुनी. बट उसके बाद दिस जो विलेज क्रिकेटर है ही इज नाउ बीन बैंड फॉर लाइफ. ही इज बीन बैंड फॉर लाइफ कि आप नहीं खेल सकते हो कभी भी नहीं खेल सकते हो. आपने ऐसा किया तो किया क्यों. इट इज टोटल चीटिंग. मदिया की रिक्वेस्ट पर दलेर मेहंदी विद तुनक तुनक तुन कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
2: वो आ गया देखो देखो वो आ गया.
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: इंश्योरेंस मार्केट .ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. Insurancemarket.ae.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamu alaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta, or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक मॉर्निंग 8:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This is the big breakfast with me, Sid, and on the phone line I've got Ranjan with me. इनकी energy आप सुनेंगे तो मतलब मजा ही आ जाएगा। Ranjan, good morning.
3: Good morning, Sid.
2: क्या चल रहा है भाई? कितने साल हो गए शादी को? ये बताओ सबसे पहले तो।
3: शादी को next month 2 साल होने वाला है।
2: क्या बात है यार, मतलब romance तो अभी भी because Ranjan और उनकी better half ने एक शर्त लगाई थी। Ranjan, can you please tell people what happened?
3: Okay, after we saw this Musafir Cafe, तो हमारे घर पे लाइक इट एवरी टाइम वही गाना बज रहा है, लाइक शी इज टोटली इन लव विद इट। सो आई वॉज लाइक ओके आई विल रिक्वेस्ट दिस सॉन्ग विद सिड, सो इन केस ही प्लेस टुडे सो यू हैव टू टेक मी ऑन अ डेट, एंड इन केस ही डजंट प्ले आई विल टेक यू ऑन अ डेट।
2: This is the best kind of shart, you know, because in both cases you are going for a date.
3: And it's a Friday evening as well.
2: And it's a Friday evening, toh bhai date pe toh jana hi hai. Chalo, let's kind of spice things up a bit. Let's involve Sid and let him play the third wheel, yeah. But batao jaldi se ke show kaisa laga? Musafir Cafe, everybody is talking about it. On a scale of 1 to 5, how many stars would you give it?
3: I would give around like 4.5. वो 0.5 हमने इसके लिए निकाला क्योंकि जो लास्ट में जो एंडिंग था,
2: अरे बताना मत कुछ,
3: ओके सो वी नीडेड अ क्लैरिटी ऑन दैट, मोर क्लैरिटी ऑन दैट, दैट्स इट।
2: हां, एंडिंग थोड़ा सा या ऊपर नीचे हो गया, एंड आई थिंक माय थिंग इज दैट यू हैव टू वेट टिल एपिसोड 7 फॉर थिंग्स टू स्टार्ट हैपनिंग आउट ऑफ 8 एपिसोड। 7वें एपिसोड तक वेट करना पड़ता है देखने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है, कहाँ जा रही है कहानी। बट या इफ यू लाइक दैट स्लो बर्न काइंड ऑफ अ रोमांटिक, यू नो, बाहर बारिश हो रही है, हाथ में चाय कप है, वैसा वाला एक फील आता है। मसूरी वसूरी का बढ़िया सेटिंग है। हाँ,
3: यस एग्जैक्टली, और जो उन्होंने जो कैफे जो सेटअप किया है ना, लाइक आई फेल्ट लाइक आई शुड हैव अ लोकेशन लाइक दैट, एंड लाइक जब मैं रिटायर करूंगा आई नीड टू हैव अ कैफे लाइक दैट।
2: What is it about पहाड़ों पे चाय एंड मैगी का कैफे? हर किसी के, अगर आप 10 लोगों को पूछो, 8 लोग का प्लान यही होगा कि मैं रिटायर करके पहाड़ों में एक मैगी और चाय का खोली खोलना चाहता हूँ। It's got this romance to it, right? So yeah, if you are in that zone, then definitely you will like Musafir Cafe. Lekin jo gana jiski baat kar rahe hain Ranjan, that is Kaafi Hai Na, and isko Garvit Priyansh ne gaya hai, Junita Gandhi ki awaaz hai isme. So are you going to be singing a bit of this for your better half? Are you a good singer or not?
3: No. You no, play, no. That would be better.
2: Definitely not on the radio. As depending on how well the date goes, then Ranjan will decide whether to sing or not. Hai na?
3: Yes, so yes.
2: Ranjan, thank you so much. Absolute pleasure talking to you. Thanks so much for speaking to us. Have a wonderful weekend. Aur date kaisa raha? Please, mujhe Monday call karke batana. Theek hai?
3: Sure.
2: All right. Thank you. What? Aapke better half ka naam to bataiye.
3: Sneha.
2: Okay, so this is from Ranjan to Sneha. This is her current favorite. This one's called Musafir Cafe Se Kaafi Hai Na. Show ki tarah ye gana bhi thoda sa slow burn hai. I'm taking a bit of a risk. My music manager might kill me, but Ranjan and Sneha ke liye itna risk to main le hi sakta hu yaar.

मुसाफिर कैफे से काफी है ना विक्रांत मसी, वेदिका पिंटू, महिमा मकवाना का वो नेटफ्लिक्स शो जिसकी हर कोई बात कर रहा है. शुड यू स्ट्रीम इट और स्किप इट, दैट डिसीजन कमिंग अप टुमारो इवनिंग. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द बिग बिंज. इसी शो की मैं बात करने वाला हूँ, द गुड थिंग्स अबाउट द शो, द नॉट सो गुड थिंग्स, एंड फाइनली द वर्डिक्ट. शुड यू स्ट्रीम और स्किप नेटफ्लिक्स का मुसाफिर कैफे सैटरडे इवनिंग 7 to 9 एंड देन संडे फ्रॉम 10 AM टू 12 PM. फिलहाल रंडे लाल वर्जन ऑफ ओए ओए फ्रॉम धुरंधर कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. एंड फ्री बस सर्विस के बारे में सुना कि नहीं आपने, कुछ देर में बताऊंगा. कीप इट लॉक्ड, दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: इट्स 8:37 o'clock on this Friday की सुबह 31st of July. मुझे लगता है ना कि हम लोग चीज़ों से ऑब्सेस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले हम लोग धुरंधर से ऑब्सेस थे, उससे पहले सैयारा से. नाउ द लेटेस्ट ऑब्सेशन इज रामायण का ट्रेलर.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में हर किसी को कुछ ना कुछ कहना ही होता है, वैसे रामायण के ट्रेलर के बारे में भी हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है. The latest to jump into the ring of opinions is Nitish Bhardwaj. अगर आप पूछ रहे हो नितिश भारद्वाज हु, देन यू आर नॉट अ मिलेनियल. ही इज द गाय हू प्लेड भगवान श्री कृष्ण इन महाभारत, दी ओजी बीआर चोपड़ा वाली महाभारत में जो श्री कृष्ण बने थे. उन्होंने ही इज गॉट सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस. एक तरफ उन्होंने कह दिया कि भाई ही इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड के भाई सब कुछ छोड़ दो एक तरफ, नमित मल्होत्रा की रामायण पार्ट वन को ऑस्कर मिलेगा ही मिलेगा. मैंने बोल दिया, मतलब बोल दिया दिस टाइम पार्ट वन को. देयर इज नथिंग, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस फिल्म को ऑस्कर देने से रोक सकती है. एंड ही इज जस्ट गोइंग गागा ओवर द विजुअल इफेक्ट्स, परफॉर्मेंसेज. वाह वाह, क्या म्यूजिक है, अति सुंदर. एंड ही सेज दैट इट कुड अर्न ग्लोबल रिकग्निशन. ऑल्सो इज अप्रिशिएटेड द डायरेक्टर नितेश तिवारी एंड नमित मल्होत्रा, फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यूज. बट ही हैड सम वर्ड्स ऑफ कॉशन फॉर रणबीर कपूर. उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर शुड रिकग्नाइज व्हाट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज दैट्स बीन गिवन टू हिम टू प्ले लॉर्ड राम, राइट. एंड ही सेड दैट इसके बाद, अभी तक जो किया वो किया, लेकिन इसके बाद ही होप्स दैट रणबीर कपूर वुड चूज हिज रोल्स वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कल्चरल वैल्यूज इन द फ्यूचर. व्हाट ही एक्चुअली मीन्स इज, एंड आई कोट, नो मोर एनिमल. अगर आपको कोई गोल्ड माइन भी ऑफर कर दे, उसे मना कर दो. एनिमल जैसी पिक्चर आपको नहीं करनी है. प्लीज डू नॉट पल्यूट योर वाणी एनी मोर. एग्जैक्ट ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है. प्लीज डू नॉट पल्यूट योर वाणी, आपकी बोली को प्लीज पल्यूट मत कीजिए बाय दीज गाली गलौच वाली फिल्म्स. हमारे पास इनफ स्टोरीज हैं, इनफ कहानियां हैं टू सेशिएट योर एक्टिंग प्रोविस. दैट इज वॉट नितिश भारद्वाज इज सेइंग टू रणबीर कपूर. टॉकिंग अबाउट ऑब्सेशन, इमरान हाशमी इज वन सच ऑब्सेशन. From Awarapan to Ve Junoon, coming up in just a while. Ve Junoon, composed by Mithun, coming up very soon. Kya baat hai yaar, how poetic.
1: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip? Posting pictures from a trekking adventure? Or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E&And UAE app or our website. T's and C's apply. E&And. Go for more.
3: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
4: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
1: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: Good morning, 8:41. Let's start with the usual suspects. 311, E11 heading south, going towards Dubai from Sharjah. Monday ho ya Friday, yahan par to aapko traffic milega hi. Aaj bhi 5 se 6 minute ki der to aap expect kar hi sakte hain. Then there is a bit of congestion building up at Beirut Street in both directions, right outside Medina Mall D62. Then Kisses Industrial, Baghdad Street, Damascus Street par bhi thoda bahut traffic is building up. Also, aaj Ribat Street pe thoda bahut traffic, and then when you take that exit going towards Festival City Mall, incident is being reported. Also, Dubai Alain Road par Jadav ke aaspaas E66 par aapko mil sakti hai 3 se 4 minute ki der.
1: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:05।
1: बॉलीवुड।

0: इतना प्रेशर होता होगा ना जब पहला गाना इतना सुपर हिट मेगा हिट इट्स अर्नड यू सो मच ऑफ मनी दैट यू आर एबल टू बाय व्हाट द मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू व्हाट वाज इट लाइक सम फैंसी कार दैट दीज ब्रदर्स बॉट क्रिश मंडल किशोर मंडल फिर पति पत्नी और वो दो में ये गाना शामिल भी हो गया. अब बताओ बच्चू सेकंड गाना क्या बनाओगे.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: जब बनाएंगे तो आपको सुनाएंगे लेकिन राइट नाउ क्या बारी है. इट इज टाइम टू प्ले द बिग बॉलीवुड क्विज जिसका आप सबको इंतजार रहता है. आई एम गोना बी आस्किंग यू टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ योर बॉलीवुड मसल. आज स्पेशल डे 31st of July. रोज कुछ ना कुछ हम लोग बॉलीवुड कनेक्शन ढूंढ ही लेते हैं. आज एक फिल्म का एनिवर्सरी है 11th anniversary. राइट 31st of July 2015 को कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी. इट वॉज एन आइकॉनिक थ्रिलर. एक इंडियन फिल्म थ्रिलर कैसी होनी चाहिए. It was defined by this remake of a very popular Malayalam film. Okay, ek scene main aapko sunata hu, isko suniye bataiye kaun si film ki main baat kar raha hu. It's an absolute sitter today.
2: Insaan apni family ke bina jee nahi sakta. Uske liye kuch bhi kar sakta hai. Chahe duniya use matlab hi kahe. Ya khud kar.
0: Yeah. Kaun si ye film hai jisne ek bahut hi फेमस पॉपुलर पब्लिक हॉलिडे का मतलब ही चेंज कर दिया. एंड इट्स अबाउट अ कॉमन मैन हु यूजेस सिनेमा नॉलेज एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी. अगर आपको फिल्म का नाम पता है कौन सी फिल्म का आज 11th anniversary है गिव मी अ कॉल 800-1062. गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062. सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं 2 open movie tickets इन द बिग बॉलीवुड क्विज from the upcoming film Toxic. Tabahi coming up in just a while. Vishal Shekhar ki awaaz. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरस कहाँ है? कहाँ है अलरस?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरस।
2: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: 9:11 on this Friday की सुबह, last day of July, and आपने सुना होगा 3rd of August तक काफी unpredictable weather आप expect कर सकते हैं। बारिश भी होगी कहीं कहीं पर। It's 38 degrees Celsius फिलहाल, तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। It's nice and sunny out there. Humidity at 48% as is to be expected. Highs of 41, lows of 34 degrees Celsius.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: We are playing the Big Bollywood Quiz. I've got Anisha with me on the phone line. Anisha, good morning.
3: Good morning. How are you?
2: Very good. Ek bar bolo na ke, bachcho, where's your homework?
3: Bachcho, where's your homework?
2: Bilkul teacher type sound karte ho aap yaar. But that's not because you're a teacher, but Anisha is actually under the weather a bit. Kya hua Anisha aapko? Kya hua?
3: Kuch nahi, normal flu chal raha hai.
2: Aajkal everybody's getting it, ha?
3: Yeah, everyone.
2: तो क्या चल रहा है? How's this July been? It's the last day of July and you know when it's the last day of the month, तो ऐसा एक retrospective होता है ना, postmortem करते हैं हम लोग कि कैसा रहा महीना. What are the highlights of this month for you?
3: Oh, my month was a roller coaster when it comes to work.
2: हाँ.
3: It was a roller coaster. I'm in procurement and logistics. Thanks to the world का जो भी scene चल रहा है,
2: हाँ.
3: सब चीजें late हो रही है, रोज गाली खाते हैं और अचानक से 4 महीने बाद 4 कंटेनर आ जाते हैं तो वेयरहाउस भर जाता है, तो हम तो रोज ही झगड़े और गाली को लॉन्च कर रहे हैं.
2: क्या बात है, वायरस से डर नहीं लगता साहब, कंटेनर से डर लगता है.
3: आई स्वेयर मैं अभी भी जाके झगड़ा करूंगी एक कंटेनर के लिए आपके फोन के बाद.
2: द सिल्वर लाइनिंग टू ऑल ऑफ योर यू नो कंटेनर वाले इज दैट आज अनिशा की आवाज थोड़ी सी नासाज है एंड दैट इज व्हाई जब वो चिल्लाएगी तो यूजुअली जो इफेक्ट होता है वो नहीं होगा बिकॉज थोड़ी तबीयत खराब है अनिशा. सो एवरीबॉडी इज गोना हैव लाइक एक्स्ट्रा डे ऑफ वीकेंड ऑल थैंक्स टू योर सिकनेस.
3: यस दैट इज फॉर श्योर. नहीं तो बेचारे रोज डांट खाते मुझसे अनिशा.

0: होगा निशा. सो एवरीबडी इज गोना हैव लाइक एक्सटेंड एक्स्ट्रा डे ऑफ वीकेंड ऑल थैंक्स टू योर सिकनेस.
1: यस यस दैट इज फॉर तो बेचारा रोज डांट खाता मुझसे
0: अनिशा. मतलब बहुत डर लग रहा है मेरे को यार, बहुत ही डर लग रहा है आपसे मेरे को.
1: क्योंकि मुझे मेरी लेबनीज बहुत से डर लगता है.
0: चलो यार ठीक है अनिशा, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस नाउ. या लास्ट टाइम मैंने आपको एक सीन सुनाया था विच इज दैट वन फिल्म दैट चेंज द एंटायर कोर्स, आई थिंक टर्निंग पॉइंट ऑफ थ्रिलर्स इन बॉलीवुड. अजय देवगन के करियर का भी एक पिवट था ये. 11 इयर्स ओल्ड हो गई ये फिल्म. इट रिलीज ऑन द 31st of July 2015. इट वॉज अबाउट अ कॉमन मैन हु यूज सिनेमा नॉलेज फॉर सर्वाइवल. वॉट फिल्म आई टॉकिंग अबाउट?
1: दृश्यम.
0: दृश्यम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत ही नेजल ट्वैंग के साथ आपने दिया लेकिन बिल्कुल सही जवाब दिया. अनिशा कांग्रेचुलेशंस, दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए. डोंट गो नाउ, डोंट स्प्रेड द जर्म्स, बट व्हेन यू गेट वेल देन यू कैन गो एंड वॉच द मूवी ऑफ योर चॉइस, यू नो, विद दैट पर्सन ऑफ योर चॉइस एट अ टाइम ऑफ योर चॉइस एज वेल. ओके
1: श्योर.
0: टेक केयर अनिशा. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर. गेट वेल सून.
1: Thank you so much. Have a great day.
0: That is Anisha, हमारी आज की विनर हैं. Don't forget, रोज सुबह ये मौका आपके पास to win two open movie tickets in the Big Bollywood Quiz. Here's Manj Music with the Lal Gagra. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, and the show is brought to you by Henna Speedy Easy Haircut. You can cover your grey hair in just 5 minutes with Henna Speedy Easy Haircutter that's made in Italy. It's ammonia-free formula enriched with henna extract and argan oil, gives you vibrant, natural-looking colour. Works beautifully, even on thick hair, delivering easy, even application. The Easy Comb Applicator makes colouring as simple as combing your hair. Get maximum grey coverage, vibrant colour and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy. Coming up in just a while. Character Dheela but 2.0 Neeraj Chizar ki awaaz. This is Big 106.2 The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2.
2: अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae. सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 9:25 on the clock. Let's take a look sabse pehle at the usual 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Quite well behaved. Matlab 4-5 minute ki der to koi der samajhiye hi nahi. Heading south, and then there's Beirut Street par in both directions 3 se 4 minute extra bitayenge right outside Madina Mall D62 ki main baat kar raha hu. Then subah se there's some incident being reported at Marsa Al Khor, and this is on D83 jaise ab Ribat Street se D68 की तरफ जाते हैं, दुबई क्रीक की तरफ टर्न लेते हैं, वहां पर एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है। इफ यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट और एनीथिंग एल्स, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
0: सिया, सेल्फ ड्राइव्स न्यू एआई असिस्टेंट हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। विजिट selfdrive.ae.

0: Songs called Mascara. From the film मैं वापस आऊंगा और Gold Rates भी हमसे यही कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा 500 टच करूंगा.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
0: फिलहाल जब भी 500 के नीचे हम लोग कहते हैं Gold Rate है तो भाई कान खड़े हो जाते हैं सबके. ऐसा ही कुछ माहौल चल रहा है कुछ दिनों से. 24 कैरेट 1 ग्राम सोना आज सुबह 491.75 डाउन by almost 4 dirhams since yesterday. कल 495.5 पे क्लोजिंग हुई थी. वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोना आपको आज सुबह पड़ेगा 455.5 dirhams. Let's talk about the exchange rates for the UAE. Dirham Indian rupee 25.9 almost 26, Pakistani rupee 75.75, Bangladeshi taka 33.65. coming up in just a while my season favorite Cocktail 2 से माशुका coming up in just a while. I think Pritam Chakraborty at his absolute best. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
2: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ. बहुत गहरा जाना चाहता हूँ. देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती. लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता. फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे.
1: 106.2 The Beat of Bollywood. The biggest pizza deal of the season is here. UAE, get ready for Papa John's Mega Week. For 1 week only, from the 29th of July to the 4th of August, buy one large or medium pizza and get another free. Same value, double the pizza. It's the ultimate pizza sale you don't want to miss. Available on the Papa John's app, plus dine-in and takeaway. Don't wait. Download the Papa John's app. Mega Week, 1 week only. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamu alaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
0: Good morning, it is 9:43 on the clock on this Friday ki subah. Friday ke din to traffic aram aram se hi chalta hai. Aaj is no different. We find a bit of a congestion 311 par heading south going towards Dubai from Sharjah right at city center Zaya. थोड़ा बहुत ट्रैफिक जस्ट टिल इंडस्ट्रियल एरिया 15, उसके बाद एवरीथिंग इज क्लियर. इसके अलावा बेरूत स्ट्रीट पर थोड़ा बहुत साउथ बाउंड ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स मदीना मॉल, बिट ऑफ कंजेशन अल किसेस इंडस्ट्रियल एरिया में भी, अल नादा पॉन्ड पार्क की तरफ जाती हुई थोड़ी सड़कों पे आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा. देन देयर इज E11 इतिहाद रोड पर अल नादा इंटरचेंज 1 एज यूजुअल 4 से 5 मिनट की देर. देन बिट ऑफ कंजेशन एट वाटर फ्रंट मार्केट एज वेल देरा में गोइंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई गोल्ड सूक. देन करामा की कुछ सड़कों पर आपको ट्रैफिक कम मिलने वाला है. बिट ऑफ कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स दुबई frame D75 per everything else seems to be smooth flowing. If you spot something, give me a call. 800-1062 is the number.
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा ही है, हे हरिराम ये क्या हुआ, एंड सम पीपल उसकी तारीफ कर रहे हैं, मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, आजकल ट्रेलर के भी रिव्यूज आने लगे हैं यार। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रामायण 2000 करोड़ की वो फिल्म जो कि नमित मल्होत्रा VFX के मास्टर मल्टी ऑस्कर अवार्ड विनर क्या प्रस्तुत करने वाले हैं दिस दिवाली, आई कैन नॉट वेट फॉर इट।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एंड लिसन, जब इतना बड़ा स्केल हो, इतना बड़ा कैनवस हो, 2000 करोड़ की का बजट हो, तो एक्सपेक्ट पीपल टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट गोइंग टू डाई डाउन एनी टाइम सून, राइट? दिस एंटायर हो हल्ला अबाउट द ट्रेलर दैट फाइनली ड्रॉप्ड यस्टरडे एंड पीपल कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। नाउ देयर आर two main highlights. One is a presence that people are talking about and the other is ek absence jo logon ko khatak rahi hai. Sabse pehle presence ki baat karenge. One actor that I'm really looking forward to watching in Ramayan is Vivek Oberoi. He's playing this character which is like very very less known or unknown kind of a character. Iska naam hai Vidyut Jeev aur unka jo appearance tha in the trailer has gone absolutely viral, especially his fight scene he's got with Yash ke Ravan character. So Vidyut Jeev, Vivek Oberoi versus Ravan, Yash, people cannot wait for that. I mean, Yash ki presence everybody can't get enough of. I just want to see his presence and I think he's a perfect casting choice for Ravan. Now chalte hain the absence ki taraf. What is the one absence in this trailer, bhai sahab? Where is Sunny paji? Hai Hanuman ji kithe? There is no Sunny Deol. And जब ये सारा का सारा गुस्सा लोगों ने निकाल लिया ऑन सोशल मीडिया, यू नो व्हेन पीपल गॉट देयर फिल ऑफ जस्ट यू नो सेइंग खरी खोटी कि यार हाउ कैन देयर बी अ रामायण ट्रेलर विदाउट हनुमान जी, हाउ कैन देयर बी अ रामायण ट्रेलर विदाउट सनी देओल, वेरी सनी, ये सब हो गया। उसके बाद अब ये हवा आने लगी कि इट कुड हैव बीन डेलिबरेट, द मेकर्स कुड हैव डेलिबरेटली हेल्ड बैक सनी देओल एंड हिज हनुमान कैरेक्टर टू रिवील, टू कीप एंटिसिपेशन हाई एंड टू प्रिजर्व द सरप्राइज। अगर ऐसा है, well played my boys, expect lots of moja hi moja this Diwali, just like the song Mika Singh, moja hi moja coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid.
1: Big 106.2.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:05।
1: Bollywood.

0: आई थिंक फुटबॉल हम लोग कभी अच्छा खेल नहीं पाते, लेकिन वी आर ऑब्सेस्ड विद टू थिंग्स, वन इज ब्राजील एंड द अदर इज अर्जेंटीना।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ये मैं क्या सुन रहा हूं, बिग फुटबॉल फैन, एंड दिस इज समथिंग रियली टू लुक फॉरवर्ड टू। इंडिया आर गोना होस्ट 5-time world champions Brazil in Kolkata as soon as the 3rd of October. Kya baat kar rahe ho yaar, landmark moment in India's football history, they're calling it that. Bhai, jo hamari senior men's national team hai, they're going to be facing, and aisa nahi ki sirf Brazil ki team photo khichane aa rahi hai jaise ki Messi bhai sahab aa rahe the, lekin they're actually going to be playing an exhibition match against the Indian team. So imagine Brazil versus इंडियन नेशनल टीम, ये किसी वर्ल्ड स्टेज के प्रॉपर टूर्नामेंट में तो हो नहीं सकता, तो एग्जीबिशन मैच से ही हमें खुश होना पड़ेगा। एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कंफर्म किया दैट द आइकॉनिक विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में ये होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी मार्किंग द फर्स्ट टाइम। इससे पहले ब्राजील की सीनियर साइड इज नेवर प्लेड ऑन इंडियन सॉइल। सो करंटली रैंक्ड 5th in the world, Brazil is going to become the highest ranked opponent that India has faced since the FIFA ranking began in 1992. Achha, FIFA ranking 92 mein hi shuru hui hai. I didn't know that, yeah. But what do you think about that? Yeah? Are you excited about this? Are you one of those people who be like, right now, achha, Sid ne bol diya, abhi yahi pe main ticket book karne wala. I'm going to call my travel agent right now. 3rd of October, here I come to Kolkata. Or are you like, nahi bhai, isse kya hoga? Exhibition match khelne se kya hoga? And more so, remember what happened with Messi? Aisa koi kaand na ho jaye yaar. Filhal bhai, tera star hai. It's this weekend ka release, usse aankhon se tune 2.0 coming up in just a while. This is Lijo George ka gana. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ
3: कर रहे हो एक्सपायरी डेट बेसिस के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी
4: नहीं ऐसा नहीं है सम प्रोडक्ट्स यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट पर अचार हो गई चावल हो गए तेल हो गया घी हो गया आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव
3: सी आई डोंट नो वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे
4: नहीं ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो उसमें फंगल भी आया है And my wife has suffered a lot because of that. So yes, bread is definitely a no-go. So expiry means expiry.
3: तो ये तो यहाँ आके change हुआ होगा आपका thought process.
4: Definitely.
3: क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है सही है खा ले कुछ नहीं होगा.
4: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है
3: I know. मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का
4: इम्यूनिटी का राज वही है
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड Big Traffic brought to you by selfdrive.ae
5: Good morning, 10:20. Let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. आपको हल्का बुल्का traffic मिलने वाला है at Mustafa Industrial, E30 heading towards Rabdan. A bit of congestion picking up at Mafraq Industrial. This is E11 going towards Banias heading north. चलते हैं दुबई शारजा की ओर southbound traffic you'll find 311 E11 per usual. 3 to 4 minutes का nothing major but Sheikh Zayed Road पर आज unusual traffic आपको मिलने वाला है and this is internet city से जैसे आप निकलते हैं going towards Al Barsha going towards Umm Sikkim यहाँ पर एक incident report हुआ है heading north so be careful out there in case you have more info about this give me a call 800-1062 पर
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae
6: आराम से रहने का ठंडा पानी पीने का टीवी देखने का मौज करने का बस से मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ
7: क्या बोल रहा है तू यार प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: गुड मॉर्निंग, इट्स 10:36 ऑन द क्लॉक. लेट्स टेक अ लुक एट शेख जायद रोड. सबसे पहले बादशाह हाइट्स इंटरनेट सिटी से निकल के आप जैसे ही उन सेकंड की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर. देयर सीम्स टू बी सम इंसिडेंसेस दैट हैव टेकन प्लेस दिस मॉर्निंग आउट देयर. देन देयर इज आल्सो D71 आउटसाइड दुबई मॉल. यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स E11. इसके अलावा 66 पर अराउंड अल जदाफ एज यू गेट आउट ऑफ द क्रीक एरिया. You'll find a bit of congestion Dubai Alain Road par. Apart from the usual, 311, E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. 2 se 3 minute ka hi milega aapko traffic. In case you spot something, give me a call. 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

रहता तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हम से बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, वीकडेज 1 to 5 PM, ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Big 106.2. That's My Song by E. And.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही, यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 1:06।
1: बॉलीवुड

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Good afternoon, 41 degrees Celsius on an average across the UAE this Friday afternoon. And don't forget, over the weekend also, unstable weather aap predict kar sakte hain. And kahin par barish, kahin par ole bhi pad sakte hain. So please drive safely. Visibility might get a bit affected until the 3rd of August.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: Where is your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip? Posting pictures from a trekking adventure? Or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E&UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ
3: अरे वो एक्सपायरी डेट बेसिस के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी
4: नहीं ऐसा नहीं है सम प्रोडक्ट यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट पर अचार हो गई चावल हो गए तेल हो गया घी हो गया आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव
3: सी आई डोंट नो वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे
4: नहीं ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो उसमें फंगल भी आया है And my wife has suffered a lot because of that. So yes, bread is definitely a no-go. So expiry means expiry.
3: तो ये तो यहाँ आके चेंज हुआ होगा आप

0: And my wife has suffered a lot because of that. So yes, bread is definitely a no-go. So expiry means expiry.
1: तो ये तो यहाँ आके चेंज हुआ होगा आपका थॉट प्रोसेस.
0: डेफिनेटली.
1: क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है, सही है, खा ले कुछ नहीं होगा.
0: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है.
1: आई नो मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे. हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है, वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का
0: राज वही है.
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: फ्राइडे को घर जाए वापस लौट कर वीकेंड शुरू करने की जल्दी हर किसी को होती है, ऐसा दिख रहा है सड़कों पे. भाई अभी 3-4 घंटे बचे हुए हैं एटलीस्ट फॉर द वीकेंड टू स्टार्ट, सो आराम से गाड़ी चलाओ. व्हाट्स हैपनिंग एट ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट हेडिंग अप नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स शारजा एरिया, आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक वहाँ पर मिलने वाला है E11 पर. देन देयर इज ऑल्सो बिट ऑफ कंजेशन एट E11 अल्लाह इंटरचेंज 1 अगेन हेडिंग नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स शारजा फ्रॉम दुबई, ऑल्सो बिट ऑफ कंजेशन ऑलरेडी एट 311 एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स सिटी सेंटर मिर्ज़ीफ. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
2: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 Big 106.2

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज। अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7. One call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: Big 106.2, but this is The Big Mix. And 31st of July is a big Bollywood birthday. Ek Bollywood actress ka aaj birthday. So let me kind of, ask you a question. Afternoon mein lunch band karke baithe hain aap, how much are your batteries recharged? How much do you know your Bollywood? Ek scene mein aapko sunata hoon, bataiye ki actress ka naam kya hai?
2: Main pasand hoon tujhe.
3: Bahut.
2: तो वो येलो वाला फूल मोना को क्यों दिया?
3: अगर नहीं देता तो पूरे साल तेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने में निकल जाते, और तू पूछती भी नहीं कि मैं तुझे लाइक करता हूँ कि नहीं करता। देख डिंपल, मैं सिर्फ तेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, अब तो बता दे तू मुझे लाइक भी करती है कि नहीं करती है? पालमपुर का सीधा सा तो लौंडा हूं मैं, या तेरे को सिर्फ चंडीगढ़ वाले चाहिए? जल्दी बता, क्योंकि आजकल ना मुझे नींद भी नहीं आती यार, पता नहीं।
2: बैठ। हाथ दे अपना।
3: इसका क्या मतलब?
2: अब तेरी परमानेंट बुकिंग हो गई।
1: कौन है ये परमानेंट बुकिंग करने वाली? अ क्लू फॉर यू दैट हर रियल लाइफ हस्बैंड वाज इन दिस सीन विद हर। इफ यू नो द करेक्ट आंसर, व्हाट्सएप इट टू मी 0543091062। कोई प्राइज वाइज नहीं, प्ले फॉर प्राइड नॉट फॉर प्राइज। दिस इज द बिग मिक्स विद मी सेम।

0: insurance.ie.
1: Insurancemarket.ie.
0: The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ie.
1: Insurancemarket.ie.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: हमारी तरह ट्रैफिक भी लंच ब्रेक पर गया हुआ है. वेरी वेल बिहेव्ड ट्रैफिक, हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको जरूर मिलेगा ऑन E11 दुबई मीडिया सिटी हेडिंग नॉर्थ अ बिट एंड देन जस्ट अ बिट अराउंड रसल खोर अगेन हेडिंग नॉर्थ. And this is going away from Russell Core Wildlife Sanctuary on E44 Al Khail Road. In case you spot something and if it's safe to call, call me on 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2.

The beat of Bollywood. Big 106.2. That's My Song by E. End.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:07।
1: Bollywood.

0: This is the Big Mix on Big 106.2 with me Sid and हम लोग celebrate करते हैं not just इंसानों के birthday but also फिल्मों के जन्मदिन भी तो celebrate करने होते हैं. आज 11th anniversary है of a film that completely changed the face of thrillers in Bollywood. Although it was a remake of a Malayalam film, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्टर की लाइफ ही चेंज कर दी. पीपल्स आर टेकिंग हिम अ बिट मोर सीरियसली एज वेल. एंड थ्रिलर्स कैसे बनाई जाती हैं, ये पूरा एक इट्स लाइक अ प्ले बुक, ऑलमोस्ट लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हाउ अ थ्रिलर शुड बी मेड, राइट? सो सुनिए, इस सीन को पहचानिए, कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ. विच बॉलीवुड थ्रिलर सेलिब्रेट्स 11 ईयर्स टुडे द 31st?
1: इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे दुनिया उसे मतलब ही कहे.
0: इनफैक्ट एक पूरे के पूरे पब्लिक हॉलीडे का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया इस फिल्म ने. इनकेस यू फिगर आउट विच फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट, सेंड मी अ व्हाट्सएप 054-309-1062. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: Namaste.
1: Hola.
0: Assalamu alaikum.
2: Bonjour.
3: Ni hao.
2: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: Listen to her every day.
6: Mugembo! खुश हुआ
7: अरे वो एक्सपायरी डेट बेसिस के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी
8: नहीं ऐसा नहीं है सम प्रोडक्ट्स यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट पर अचार हो गई चावल हो गए तेल हो गया घी हो गया आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव
7: सी आई डोंट नो वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स जब तक आपके अचार में

0: हो गए, तेल हो गया, घी हो गया, I mean what expiry date, themselves are preservative.
1: See, I don't know, we learn from our mothers, especially girls, जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे, मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है. ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में, ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे.
0: नहीं, ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो, उसमें फंगल भी आया है एंड माय वाइफ हैज सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट. तो यस, ब्रेड इज डेफिनेटली अ नो गो, सो एक्सपायरी मींस एक्सपायरी.
1: तो ये तो यहाँ आके चेंज हुआ होगा आपका थॉट प्रोसेस. क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है, सही है, खा ले कुछ नहीं होगा.
0: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है.
1: आई नो मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे. हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है, वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का
0: राज वही है.
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
5: गुड आफ्टरनून. द टेम्परेचर हवरिंग अबव 40 एंड 42 के बीच में अक्रॉस द यूएई, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अनस्टेबल वेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल थ्रू द वीक. इन फैक्ट टिल द थर्ड, टिल मंडे कहीं बारिश, कभी ओले भी पड़ सकते हैं. दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज प्रेडिक्टेड एंड विजिबिलिटी माइट गेट रिड्यूस्ड. सो व्हाटएवर यू डू, ड्राइव सेफली.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 par, this is The Big Mix. With me, Sid, all the way till 5 PM. And thank you very much to Mahima and Zara and everybody who messaged in. Of course, 2 October. Ye sunke agar aapko महात्मा गांधी से पहले विजय सलगांवकर याद आते हैं तो आप एक बहुत ही बड़े बॉलीवुड के कीड़े हैं। इस द फिल्म लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम कंप्लीटली चेंज द फेस ऑफ थ्रिलर्स के कैसे एक थ्रिलर को बनाया जाता है, कैरेक्टर्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स कैसे होते हैं, ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। द बिग क्वेश्चन इज ऑफकोर्स इट्स द 11th एनिवर्सरी ऑफ 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर वाली फिल्म एक्चुअली रिलीज ऑन 31st of July, सो या 11th एनिवर्सरी ऑफ दृश्यम। दृश्यम इज द करेक्ट आंसर। द करियर, द टर्निंग पॉइंट इन अजय देवगन करियर एंड इन फैक्ट इन बॉलीवुड के थ्रिलर का करियर एज वेल, लाइक वी बीन स्पीकिंग अबाउट। बट द बिग क्वेश्चन इज दृश्यम द बेस्ट थ्रिलर ever made in Bollywood? I'm going to be putting up a poll question on this on our Insta page 106.2 Big FM. Wahan par jaiye, follow kijiye hame agar aap nahi karte. 106.2 Big FM, that's our Insta handle. Is Drishyam the best Bollywood thriller of all time? Keep it locked. This is The Big Mix with me, Sid.

0: पर ये मत भूल, ये मत भूल, प्रेमी है पागल है दीवाना है।
1: जा जा जा जा जा जा जा जी रे अपनी जिंदगी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 대참 대라죠.
1: 자네네 봐봐. 앞대 바바바바 바브라우 간 빠트라우 앞대 뭘.
2: 106.2 The B

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, 4:06।
1: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर. The Big Bollywood Countdown with Mumsy. हर सैटरडे 4 बजे और संडे 12 बजे सिर्फ बिग 106.2 पर.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: चुपती चलती गर्मी का मौसम आया. अराउंड 43 डिग्रीज सेल्सियस ऑन एवरेज अक्रॉस द यूएई. लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एज वेल. एंड यू कैन प्रिडिक्ट एक्सपेक्ट सम अनस्टेबल वेदर टिल द 3rd ऑफ ऑगस्ट. दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज सेड. कभी कभी ऑरेंज अलर्ट भी है. सो ड्राइव सेफली. यू नेवर नो व्हेन विजिबिलिटी माइट गेट हिट. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स. आज सोनू सूद का भी बर्थडे है. व्हाट अ कोइंसिडेंस इट इज के कल देयर वाज द अदर सोनूज बर्थडे. 30th ऑफ जुलाई इज सोनू निगम एंड 31st ऑफ जुलाई इज सोनू सूद. बैक टू बैक सोनू बर्थडेज वी सेलिब्रेटिंग. एंड सोनू सूद इज वन ऑफ दोज पीपल, ना वेरी रेयर पीपल, जो कि रील एंड रियल लाइफ के हीरो हैं. करेक्ट. आई मीन इज नोन एक्चुअली नाउ डेज, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, आफ्टर कोविड, एंड एवरीबडी नोज व्हाट ही डिड ड्यूरिंग द पैंडेमिक. इज वन ऑफ दोज स्टार्स हु काइंड ऑफ गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल. एंड एक अच्छा खासा उन्होंने वहाँ पे अपना एक इंप्रेशन जमाया है. एंड ही इज नोन फॉर हिज एक्शन विलन रोल्स. या एक टाइम पे विलन के रोल्स के लिए जाने जाते थे. राइट. मासी स्क्रीन प्रेजेंस. बट देन द ऑडियंस स्टार्टेड कनेक्टिंग विद सोनू मच मोर देन जस्ट his films. I mean, and aisa hota hi hai. You know, if you ask anybody of yesteryear, I was lucky enough to interview people like, you know, Dev Anand also quite a few years ago. So one person who's considered like hands down the best guy in Bollywood ever, the guy with the purest heart, jo Pran naam ke jo villain hai na, villain the, Pran saab is considered to be the guy with the heart of gold इन बॉलीवुड. कि कभी किसी ने बोला कि प्रांत साहब आपने बहुत ही अच्छी घड़ी पहनी हुई है, तो उतार के सीधा घड़ी दे देंगे, ये लो मेरी तरफ से आपके लिए. सो एंड ही वाज लाइक द बिगेस्ट, सच अ बिग विलेन, कि बहुत सारे सालों तक लोगों ने अपने बच्चों के नाम प्राण रखे ही नहीं थे, बिकॉज दैट्स हाउ बिग अ विलेन ही वॉज. एंड देन सोनू सूद अगेन विलेन इन बॉलीवुड डूइंग नॉन विलेनस थिंग्स. इट्स हिज बर्थडे टुडे. एंड या उनके पब्लिक हेल्प के बारे में कौन याद नहीं कर सकता. आई मीन, हू कैन फॉरगेट अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स दैट ही डिड एंड इन टफ टाइम्स. राइट. सो इट्स मोर देन जस्ट बाइसेप्स, इट्स गॉट गुडविल विद बाइसेप्स. सो हैप्पी बर्थडे सोनू सूद. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिर. विच इज योर फेवरेट सोनू सूद परफॉर्मेंस? या फॉरगेट अबाउट हिज सोशल वर्क, बट फिल्मों की बात करें तो फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी है? इफ यू गॉट एन आंसर, व्हाट्सएप इट टू मी 0543091062. दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: This is the Big Mix with me, Sid. राइट ऑन बिग 106.2 मैं बताता हूँ आपको कि कल शाम को आपको क्या करना है. यू गॉट टू ट्यून इन फ्रॉम 7 to 9 टू द बिग बिंज. ओके, बिकॉज वी गॉन बी टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स का ब्रांड न्यू शो स्टारिंग विक्रांत मस्सी दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट. इट्स कॉल्ड मुसाफिर कैफे. मुसाफिर कैफे, स्ट्रीम इट, स्किप इट. वॉट आर द गुड थिंग्स अबाउट इट, द बैड थिंग्स अबाउट इट. बैड तो क्या मतलब, नॉट सो गुड थिंग आई शुड बी सेइंग मोर डिप्लोमेटिकली. एंड देन फाइनली द वर्डिक्ट के वेदर यू शुड वॉच इट, स्पेंड योर टाइम on it. 8 episode hai ye. And just a bit of a precursor for you. Agar aapko pahad pasand hai, if somebody asks you the question ke, are you like a mountain kind of a guy or are you a sea kind of a guy, agar aapka jawab hai mountain, then 50% of the job is done. That's just a bit of a kya kehte hai, teaser for you. So don't forget the Big Binge every Saturday evening 7 to 9, and then Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. as well. Don't forget to tune in to Big 106.2. We're going to be talking about Musafir Cafe right here on Big 106.2.

0: listening to The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
4: एक ऐसी फिल्म जिसमें बिल्कुल कोई रिलैक्सिंग मोमेंट नहीं था, यू नो, इसके एक्शन सीक्वेंसेस वर इंस्पायर्ड बाय क्लासिक हॉलीवुड मूवीज जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर 2, मिशन इम्पॉसिबल 2।
5: और इसमें भी इतना सारा नहीं था कि आई एम नॉट रॉन्ग देन।
4: नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार। ये सब मिशन इम्पॉसिबल, टर्मिनेटर, ये सब क्या है इस फिल्म के सामने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पानी कम चाय। कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं?
5: जानी दुश्मन, एक अनोखी प्रेम कहानी।
4: किसने मारा तुम्हें?
3: इसने।
4: आई थिंक सोनू निगम को कोई तो अवार्ड इस फिल्म के लिए मिलना चाहिए यार। व्हाट डू यू थिंक?
5: एक्चुअली ही डिड इट एटलीस्ट 5 फिल्म, तो उसमें एक पिक्चर में तो अवार्ड मिलता ही है उसका। इसमें ऑलमोस्ट लाइक इफ यू कैन से एवरी वीकेंड इंडिया में री सिनेमा पे जानी दुश्मन का एंड सोनी मैक्स पे अपना अमिताभ बच्चन का इस मूवी था सूर्यवंशम, यस, खीर वाला।
4: खीर वाला सीन और ये जानी दुश्मन में तो खीर के बहुत सारे सीन थे। मतलब इसका इससे अच्छा सीन हुआ ही नहीं है कभी बॉलीवुड।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae।
4: फ्राइडे शाम में घर जाने की जल्दी हर किसी को रखती है एंड वीकेंड शुरू करने की जल्दी हर किसी को होती है। ये दिख रहा है सड़कों पर व्हेन यू हेडिंग टुवर्ड्स शारजा फ्रॉम दुबई, यू विल फाइंड ट्रैफिक बोथ ऑन 311 एंड 11। बोथ दीज आर्टरीज पर आपको एटलीस्ट 4 से 5 मिनट की देर होगी। नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक अ बिट ऑफ कंजेशन ऑल्सो शेख जायद रोड पर एज यू क्रॉस मीडिया सिटी गोइंग टुवर्ड्स उम सिक्किम एरिया। इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल, लेट मी नो, 800-1062 इज द नंबर।
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

इसी के साथ आज के समाचार अब जाके समाप्त हो रहे हैं। आप जानते हैं पूरे 8 घंटे आजकल मैं आपसे बात करता हूँ, सुबह 7 से 11 और फिर दोपहर को 1 से 5 के बीच में। आई लाइक हाउ लेड बैक एंड रिलैक्स दी आफ्टरनून्स आर। इनफैक्ट आई हैव नेवर डन एन आफ्टरनून रेडियो शो एंड या इट्स काइंड ऑफ ग्रोइंग ऑन मी। सो चलो इट्स टाइम फॉर मी टू फाइनली गेट आउट ऑफ द स्टूडियोज एंड स्टार्ट एंजॉयिंग माई वीकेंड। आप भी वीकेंड को पूरी तरह से इंजॉय करो यार, जम के जैसे कहते हैं ना, सारे टेंशन भूल जाओ। डोंट टेक योर वर्क इन टू योर वीकेंड। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू बी टेकिंग योर लीव। यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल्स, देयर सो मच दैट यू कैन फाइंड ऑन इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम। दैट्स आवर इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम। नहीं फॉलो करते तो अब फॉलो कर लीजिए। आई एम सिट सेट SIDSETH। यू कैन फॉलो मी एज वेल ऑन इंस्टाग्राम। वी विल सी यू नाउ ऑन मंडे मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले कल शाम 7 से 9 ऑन द बिग बिंज वी आर गोना टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स का मुसाफिर कैफे। स्ट्रीम करें, स्किप करें, ऑल ऑफ दैट फॉर फुल 2 आवर्स टुमारो सैटरडे शाम 7 से 9 एंड देन संडे फ्रॉम 10 AM टू 12 PM एज वेल। सो टिल देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर फ्राइडे। बाय बाय।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: फाइनली फ्राइडे है, बट आज बहुत बड़ा काम है। गाड़ी में टंकी फुल करानी है, पेट्रोल भरवाना है। आई थिंक द ओनली पार्टी दैट्स हैपनिंग टुनाइट इज एट द पेट्रोल स्टेशंस। कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9 अ मानसी व्हाइल यू आर आउट एंड अबाउट हेडिंग होम, प्रोबब्ली क्यूइंग अप एवरी सिंगल इवनिंग 5 से 6 हम यहाँ पे महफिल जमाते हैं। मतलब दिस इज एन एक्सक्लूसिव कॉन्सर्ट फॉर ऑल द बाथरूम सिंगर्स कि अपने टैलेंट को सिर्फ बाथरूम तक मत रखिए, बाहर लेके आइए।
1: Karaoke.
2: मैं आपको एक ट्रैक सुनाती हूँ और फिर आप मुझे अपनी मधुर आवाज में उस गाने को यहाँ सुना के अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। यस, लाइक आई से, गाना आए आना आए गाना चाहिए। इट्स सच अ ग्रेट वे टू अनवाइंड, रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग वीक। फ्राइडे की शाम है, थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल है।

आपका ट्रैक, अब ये मत कहना कि ये नहीं पहचाना तो क्या किया लाइफ में। इफ यू फिगर आउट ये कौन सा गाना है एंड यू रेडी फॉर कारियोके, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। वी आर ब्रिंगिंग इन द वीकेंड, कीपिंग यू कंपनी, आई एम मानसी, राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल। म्यूजिक लाउड शीशा।

0: International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University, where the world comes to learn.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamualaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: The Big Jill.
6: All my favorite music in one spot.
5: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
7: I'm telling you, the only place जहां आज ट्रैफिक होगा वो होगा पेट्रोल स्टेशन. फिलहाल 15 से 20 मिनट का डिले अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, there's हल्का फुल्का ट्रैफिक at the moment near Dubai Creek Harbour and Nadal Hummer. दो हैवी बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ सिचुएशन एट द मोमेंट अगर आप सत्वा के आसपास हैं. शेख जायद पे भी 25 मिनट डिले. देर इज हैवी ट्रैफिक नियर DIFC. इसके अलावा कहीं अटके हैं बताइए 800-1062 पर.
5: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
9: ए मामो, सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
10: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
5: Big 106.2, the beat of Bollywood.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Bringing in the weekend, Friday Valley vibe. And of course, we are karaokeing here. Joining us is Govind. Govind, petrol bharwa liya hai, nahin bharwa hai?
2: Yes, aaj petrol bhara liya hai, kyunki indirectly company ke group mein message aa gaya tha. Aur luckily mera tank khatam bhi tha, mujhe to waise hi bharwana tha. Aur zyada rush nahi thi, 2 baje.
1: Ye company ke group pe indirectly kaise aa gaya tha?
2: इनडायरेक्ट ऐसा था कि पोस्ट डालते हैं कि कल से पेट्रोल बढ़ रहा है, तो समझदार को इशारा काफी है।
1: मैंने तो 29th को ही करवा लिया था, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ गई थी कि जल्दी करा लो बेटा, वरना आज बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। तो लाइन थी जब आप गए थे फिल कराने टाइम?
2: नहीं यार, 2:30 इतना लाइन नहीं था चार्जर में।
1: हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो 11:30 पे जाएंगे, आखिरी वक्त तक का इंतजार करेंगे। फिलहाल क्या प्लान आपके वीकेंड के गोविंद?
2: ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन सैटरडे आल्सो, और आज काम फ्राइडे की वजह से थोड़ा कम था, तो कल वर्कलोड है।
1: ओ, आप सैटरडे को भी काम करते हैं, वेरी वेरी नाइस।
2: आई एम इन एफएमसीजी, सो वी हैव टू सर्व एवरी डे।
1: आप गाना वाना गाते हैं?
2: Yes, गाना गाने का बहुत शौक है, दिल से गाता हूँ।
1: दिल से गाते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो है गाना सुनकर बोला है कि गोविंद बस अब दिल ज्यादा मत लगाओ?
2: ऐसा बोलते थे कि ज्यादा दिल मत तोड़ो, इतना बुरा नहीं सुन सकते।
1: चलो देखते हैं कि कितना अच्छा गाते हैं गोविंद।
0: कारियोकी,
1: पहली बात तो आपने गाना पहचाना है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बोला था। आपका ट्रैक है हाँ जी सर,
2: ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे बाल, काली काली आंखें, तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, देखा जो तुझे जानन, हुआ है बुरा हाल।
1: ये आपने तुरुरु कर दिया ना, तो मैं समझ गई कि आप अच्छे सिंगर हो, अच्छे सिंगर्स को ये तुरुरु याद रहता है। गोविंद एक बात बताओ, ये जब गाना आया था किसको देख के गाते थे, काली काली आंखें?
2: एक्चुअली मतलब ये ऐसा किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं गा सकते थे, तब शायद मैं 9 या 10 साल का था।
1: अच्छा।
2: और इस गाने की वजह से काफी सारी स्टोरी भी है, और आपको बताऊं ये जब मूवी आई थी बहुत सारे एक्टर्स को बोला गया था, लेकिन उन्होंने नहीं की, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम कोई हीरो नेगेटिव दिखाया था, तो शाहरुख खान ने डेयरिंग किया और इसलिए वो किंग खान बोले जाते हैं।
1: ये देखो गाना तो देखो जैसा भी गाया हो, गोविंद जो है एनसाइक्लोपीडिया है बाजीगर की, बट नॉट बैड, आपने बुरा नहीं गाया। थैंक यू सो मच गोविंद, यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड एंड एंजॉय योर वर्क टुमारो। देखो अगर आप तुरुरु तुरुरु बेटर कर सकते हो, देन गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। इट्स टाइम फॉर द कारियोकी।
0: कारियोकी।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: See, I honestly know a lot of people who are a little sad today ke yaar petrol prices phir se badh gaye hain. But I think you can't beat Mehul. Mehul सबसे ज़्यादा दुखी हैं। ये petrol prices की वजह से है कि आप वहीं दुखी हैं?
2: नहीं दुखी नहीं था।
1: तो फिर?
2: दुखी तो नहीं हूँ मैं।
1: तो फिर?
2: मैं तो आप पेज अभी मैंने तो ये सुना रेडियो पे मैं ऐसे ही लगा रहा था फोन। मुझे लगा नहीं लगेगा।
1: तो सर लग गया तो खुशी दिखानी चाहिए ना। आपने जैसा मुझे हेलो बोला मुझे लगा सदमा हो गया है किसी चीज़ का।
2: मुझे नहीं पर मुझे नहीं आईडिया नहीं था लग जाएगा फोन।
1: क्या करते हैं मेहुल?
2: I'm into gold business.
1: Sir, if I was in the gold business, I would definitely be shouting in the top of my lungs at the moment. But
2: definitely, yeah.
1: What is your plan,
2: that
1: sir?
2: Weekend? That is only if you ask anybody who is in the gold business, you can make out.
1: नहीं मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सोने का व्यापार करते हैं, काफी टशन में रहते हैं। फिलहाल सर प्लान क्या है वीकेंड का?
2: वीकेंड का तो अभी कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही फैमिली के साथ।
1: फैमिली के साथ क्या पिक्चर देखोगे, खाना खाने जाओगे?
2: घर में बैठेंगे, खाना खाने जाएंगे या घर पे बैठेंगे?
1: वेरी नाइस। आर यू फ्रॉम गुजरात?
2: अरे वाह, आपको कैसे मालूम पड़ गया?
1: मैं समझ गई वीकेंड का आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया, मतलब इट्स ऑल सेविंग मनी। बाहर क्यों खाना है, घर पे ही खा लेंगे ना।
2: ये सही था।
1: वैसे भी गुजरातियों के घर में इतना कमाल खाना बनता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
2: नहीं आ जाए कभी भी। My wife makes a delicious food.
1: Very nice. Sir, मैं आऊंगी तो गोल्ड दोगे क्या थोड़ा बहुत ऐसी शगुन? कैसी हूँ मैं? फिलहाल अब हम आपकी मधुर आवाज सुनेंगे क्योंकि आपने गाना पहचान लिया है।
0: Karaoke.
1: ऑलराइट मेहुल जी, आपका ट्रैक आश्रम है।

0: आंजी सर
1: अली आखे एगो रेगो रेगा ये तीखी तीखी नजरे ये देसी बाल
0: चाल थी हिरनी जैसी
1: था जो तुझे जानम
0: हुआ है बुरा है
1: हाल ये काली काली आंखें
0: तुरुरु तुरुरु
1: ये गोरे गोरे गाल
0: वाह मतलब इस गाने को भी ना आपने गजल बना दिया बहुत मजा आया बहुत बढ़िया गाया मजा आ गया मेहुल जी आपसे बात करके
1: आई एम अ गजल फैन
0: मैं समझ ही गई थी जिस हिसाब से आपने ये काली काली आंखें बहुत एकदम उसका माहौल बदल दिया जज्बात
1: बदल दिया ना देख गजल में चलेगा अगर मैं गाऊंगा
0: सर बड़ा मजा आया आपसे बात करके हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू सो मच
1: थैंक यू
0: बाय मैं सच्ची आ जाऊंगी दोगे क्या 5-6 ग्राम का सिक्का तो मैं आ जाऊंगी देखो आई नो आई एम कमिंग टू अ गुजराती हाउस खाना मुझे बहुत अच्छा मिलेगा सोना आई एम नॉट टू श्योर बाय हैव अ ग्रेट इवनिंग बाय
2: बीमार हो तो लेती क्यों
3: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं

0: The biggest pizza deal of the season is here. UAE, get ready for Papa John's Mega Week. For 1 week only, from the 29th of July to the 4th of August, buy one large or medium pizza and get another free. Same value, double the pizza. It's the ultimate pizza sale you don't want to miss. Available on the Papa John's app, plus dine-in and takeaway. Don't wait. Download the Papa John's app. Mega Week, 1 week only. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamu alaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
6: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
5: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
6: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
5: चलो चले अलराज।
0: Big 106.2. That's my song by E and.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: हाँ जी, फ्राइडे की शाम है. वी आर ब्रिंगिंग इन द वीकेंड एंड एवरी सिंगल इवनिंग. हाँ, इस टाइम हम खेलते हैं ये मजेदार गेम जिससे आजकल काफी लोग डरने लगे हैं. इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. अब तो मैं बोलूंगी भी नहीं कि इट साउंड्स ईजी, बिकॉज इट इज नॉट ईजी. मैं कह रही हूँ ना, लोग डरने लगे हैं इस गेम से. अगर आपको लगता है कि यू कैन क्रैक इट इन 5 सेकंड्स, देन गिव मी अ कॉल 800-1062. वी आर ब्रिंगिंग इन द वीकेंड विद द राइट प्लेयर list.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:10।

0: Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: InsurersMarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
2: Missed your morning buzz? Yes or no?
3: एक ऐसी फिल्म जिसमें बिल्कुल कोई रिलैक्सिंग मोमेंट नहीं था, यू नो, इसके एक्शन सीक्वेंसेस वर इंस्पायर्ड बाय क्लासिक हॉलीवुड मूवीज जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर 2, मिशन इम्पॉसिबल 2, और इसमें
4: इतना सारा नहीं था कि आई एम नॉट रॉन्ग देन.
3: नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार. ये सब मिशन इम्पॉसिबल, टर्मिनेटर, ये सब क्या है इस फिल्म के सामने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. पानी कम चाय. कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं?
4: जानी दुश्मन, अनोखी प्रेम कहानी.
3: किसने मारा तुम्हें?
5: इसने.
3: आई थिंक सोनू निगम को कोई तो अवार्ड इस फिल्म के लिए मिलना चाहिए यार. व्हाट डू यू थिंक?
4: एक्चुअली ही डिड इट एटलीस्ट 5 फिल्म, तो उसमें एक पिक्चर में तो अवार्ड मिलता ही है उसका. इसमें ऑलमोस्ट लाइक इफ यू कैन से एवरी वीकेंड इंडिया में री सिनेमा पे जानी दुश्मन का एंड सोनी मैक्स पे अपना अमिताभ बच्चन का इस मूवी था सूर्यवंश, खीर वाला
3: सीन. और ये जानी दुश्मन में तो खीर के बहुत सारे सीन थे, मतलब इसका इससे अच्छा सीन हुआ ही नहीं है कभी बॉलीवुड.
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: 38 डिग्रीज, एक्सेसिव हीट, ऐसा गूगल कह रहा है. एंड ऑफ कोर्स ऐसा हम फील भी कर रहे हैं. लो जाएगा अराउंड 34. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 61% पर.
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday ki sham, weekend wali feels. We're playing the 5-second rule and Kinjal is here and she called me and she said, I want to just ask you, galat number laga hai ki sahi number laga hai? तो मैंने बोला आप मेरे टैलेंट पे शक कर रही हैं, आपको लग नहीं रहा कि किसी रेडियो वाली बंदी ने फोन उठाया? मैंने तो कितने अच्छे से हेलो कहा था।
2: डाउट है आई किस्मत की, मैं अभी रेडियो सुन रही थी और आपने धीरे धीरे नंबर बोला बिकॉज समबडी गेव यू फीडबैक कि थोड़ा धीरे नंबर बोलो, और मैंने वो लर्न करके रेड लाइट का वेट किया और मैंने डायल कर दिया और फोन मिल गया।
1: अब मैं नंबर धीरे ही बोलूंगी, दो बार उनका मैसेज आ चुका है आप नंबर बहुत तेज बोलती हैं, तो अब मैं धीरे धीरे नंबर बोलूंगी। फिलहाल किंजल, व्हाट प्लान्स फॉर द वीकेंड?
2: सो आई विल प्रोबब्ली बी वॉचिंग टू मूवीज बैक टू बैक।
1: वेरी नाइस।
2: या
1: स्पाइडरमैन और दूसरी कौन सी?
2: ओडिसी।
1: अच्छा, ये इंग्लिश मूवी देखने वाली लड़की है?
2: नहीं ऐसा नहीं है, पीयर प्रेशर।
1: मुझ पे कितना भी पीयर प्रेशर हो जाए, मेरे फ्रेंड्स ने ना एक हफ्ते पहले बोला था स्पाइडरमैन के लिए, मैंने बोला मुझे पता है स्पाइडरमैन क्या है, बट मेरे दिमाग में मैंने टॉक अबाउट स्पाइडरमैन या तो राखी सावंत की इमेज आती है, यू रिमेम्बर, या फिर स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, यू नो दिस, यू डोंट?
2: हाँ,
1: सो दैट्स माय ओनली मेमोरी ऑफ स्पाइडरमैन। फिलहाल वी विल प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5-second रूल। यू विल गेट 5 seconds, आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज, आपने तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर। ऑल द बेस्ट किंजल।
0: 5-second रूल।
3: ओह या।
1: नेम 3 things दैट यू लव गेटिंग एज अ गिफ्ट।
2: परफ्यूम, वॉच, वॉलेट।
1: वेरी नाइस, फटाफट 4 second के अंदर। 3 things that you'll pick from a hotel room.
2: Conditioner, shampoo and moisturizer.
1: Hey, nice. Ladki hazir jawab lag rahi hai. 3 red flags for you in a relationship.
2: No accountability, lying, wow, and ghosting.
1: Oh. 3 things that you notice in a guy.
2: Hair, height or? And voice.
1: Oh ho. Kinjal, I have to say, यार पहली बार के हिसाब से you are acing this game. 3 Bollywood गाने जिनमें हम आता है।
2: हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो।
1: ओहो। 3 इमरान हाशमी की मूवीज बिकॉज इट्स आवारापन कमिंग अप।
2: ओके, आवारापन।
1: हाँ।
2: एंड
1: You don't like Imran Hashmi?
2: Yeah.
1: I'm judging you right now, but you played the game so well.
2: I was afraid when I saw Madhav's this thing, so I had dialed in when Madhav was playing, and I was like, "Shit, I should have been on the line." And then you said the number very dhire dhire, and it just all fell right into it.
1: Mind blowing, yeah, Kinjal. Mind blowing. तुमसे कोई नहीं जीत सकता है बातों में, सिर्फ इमरान हाशमी तुम्हें अच्छे नहीं लगते, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बट मैं कह रही हूँ स्पाइडरमैन और ये क्या है उड़ीसा उड़ीसी, ये सब मत देखो, आशिक बनाया आपने, देखो वीकेंड पर मर्डर, देखो मर्डर 2, देखो जहर, देखो ये सब देखो वीकेंड पे। हैव अ ग्रेट वन किंजल, एंड यू आर फैंटास्टिक।
2: थैंक यू,
1: बाय
2: बाय।
1: दिस इज हाउ यू प्ले द गेम, अगर आपने खेलना है गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 7:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: Insurance Market.ae. Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800 Alfred.
7: Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
8: पैची ट्रैफिक नॉट रियली बिग अगर आप हेसा स्ट्रीट पे हैं, स्पेशली इफ यू गोइंग टुवर्ड्स द सिटी सेंटर मियासम, इट इज अ बिट स्लो मूविंग। देयर इज ट्रैफिक ऑन शेख जायद, स्पेशली अगर आप डीआईएफसी के आसपास हैं, हैवी ट्रैफिक इनफैक्ट, 20-22 मिनट डिले। देयर इज ट्रैफिक इफ यू आर अराउंड बिजनेस बे एज वेल। इसके अलावा हल्का फुल्का ट्रैफिक ऑन द जुमेरा रोड इफ यू गोइंग टुवर्ड्स उमसुकीम एंड मरीना टू जेबीआर पैक्ड एट द मोमेंट। एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
7: Sia, Self Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: The weekend is here and we're talking about 31st of July 2009. आज के दिन ये movie release हुई थी. इम्तियाज अली सैफ अली खान का production था, मतलब he was the producer of this movie. पहली movie उनके Illuminati Films banner के under बनी थी. साथ में दीपिका पादुकोण, ऋषि कपूर and of course the beautiful mysterious girl जिसके character का नाम हरलीन था. अगर आपने गेस कर लिया है मुझे बता सकते हैं 800-1062 पे. वैसे आज OTT पे भी बहुत कुछ रिलीज होने वाला है. टू स्टार्ट विद है जवानी तो इश्क होना है. आई लव दिस मूवी एंड इफ यू मिस्ड आउट ऑन दिस डेविड धवन वरुण धवन मूवी आज OTT पे ये रिलीज हो रही है. इसी के साथ दिस अनदर शो दैट्स ट्रेंडिंग, इट्स कॉल्ड आदर्श बाल विद्यालय विच इज ऑन Amazon प्राइम एंड बहुत सारे लोग जो है मुझे रेकमेंड कर चुके हैं बट मैं सिर्फ और सिर्फ सिड की रेकमेंडेशन सुनती हूँ. इफ यू वंडरिंग इस वीकेंड क्या स्किप करें क्या binge करें, you have to listen to the big binge with Sid. He'll give you the reviews, the right shows to watch. Also, I am too invested these days in lockup. अब मैंने Alliance and lockup दोनों साथ शुरू किया था. Alliance पीछे छूट गया because मैं इतना invest हो चुकी हूँ lockup में. I am obsessed with Shreya Kalra and Shilpa Shinde. In fact, the rebel kid Apurva also was one of a guest in the show. बहुत ही कलेशी शो है ये, बहुत ही कलेशी शो है. Alliance भी कलेशी है. Alliance में in fact ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटीज हैं लाइक मिनी माथुर, सुहेल खान, कुशाल टंडन टू नेम अ फ्यू. देयर्स अली गोनी, अरसलान गोनी, बट आई डोंट नो, आई एम टू इन्वेस्टेड इन लॉकअप एंड द काइंड ऑफ कलेश दैट हैपेंस बिटवीन शिल्पा शिंदे एंड राम कपूर. ओनली रियलिटी शो फैंस वुड अंडरस्टैंड. रिमाइंड यू ऑफ दैट बिग बॉस सीजन जिसमें अर्शी खान, हिना खान और शिल्पा शिंदे का कलेश हुआ था.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Just imagine 2009 में आप आज ही के दिन किसके साथ ही मूवी देखने गए थे. I watched the movie in the theater. उस समय मुझे समझ नहीं आया क्योंकि तब तो जिंदगी में लव क्या होता है यही नहीं पता था. Years later, you know, that is इम्तियाज अली. इतनी डीप मूवीज बनाते हैं कि काफी सालों बाद जो है जब जिंदगी में आप अपना दिल तुड़वाते हो, ठोकर खाते हो, तब ये मूवी समझ में आती है. फिलहाल ऑन द फोन लाइन आई थिंक आई गॉट अनदर इम्तियाज अली फैन, राइट? वेरी वेरी अंडर रेटेड इम्तियाज अली मूवी. और मैं कह रही थी कि जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा था क्योंकि यू नो तब हम छोटे थे, दिल बिल टूटा नहीं था, टाइम पास ही करते थे हम. बाद में समझ में आई है मैंने. अच्छा, आपका 2009 में टूट गया था?
2: हाँ, बहुत जल्दी.
1: ओए होए, बहुत जल्दी बड़े हो गए आप. वैसे मूवी का नाम क्या है अमान?
2: इट्स लव आजकल.
1: इट इज लव आजकल. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी.
2: यस इट इज. इट इज लाइक उसको मैंने 4-5 बार देखी है, बट स्टिल इफ आई कैन वॉच इट अगेन आई विल वॉच इट अगेन.
1: I think I need to rewatch the movie. I did years later and I understood the concept behind this. Only Imtiaz Ali can get the main lead married to someone else. Shaadi ke agle din jo hai usse realize hota hai. In fact, shaadi ke din hi realize ho gaya tha na that she can't get over Jay, that is Saif Ali Khan.
2: That's right. Aur upar se ye movie maine sirf Deepika Padukone ke liye dekha tha.
1: She was amazing. मैंने राहुल खन्ना के लिए भी देखा था, वो भी बड़े क्यूट लगे थे इस मूवी में.
2: वो मूवी के बाद अच्छा लगने लगा है वो.
1: कॉम्प्लिकेटेड कहानियां इतनी खूबसूरती से इम्तियाज अली दिखा देते हैं.
2: Especially the songs also. The songs were the best.
1: I know. But I was very disappointed जब मैंने इसका सीक्वल देखा.
2: मैंने तो उसकी हिम्मत ही नहीं की देखने की.
1: बहुत अच्छा करा आपने. मतलब आपका दिल जो तब 2009 में टूटा था 2020 में 3 बार और चकनाचूर हो जाता. What's your favorite memory or the favorite thing that you walked away with from Love Aajkal?
2: From Love Aajkal, yeah, I've remember that thing when they meet for the last time, and she's traveling abroad. I think she's going to India or somewhere.
1: Yes.
2: And this guy stays over there. So then they ask each other. She comes. He comes there with the flowers.
1: Yeah.
2: Then he says ke. Then Deepika Padukone says ke. चाहे कितनी बार भी क्यों ना मिले, एक लास्ट बार मिलना जरूरी होता है.
1: आखिरी बार मिलना बहुत जरूरी होता है.
2: आखिरी बार मिलना जरूरी होता है. या दैट रिमेंड इन माय हार्ट सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम.
1: तो आप उससे मिले थे आखिरी बार जिसने दिल तोड़ा था? नहीं मिले.
2: हाँ मिला था, मिला था, मिला था, बट लेकिन तब कुछ फील नहीं होता था.
1: हाँ मतलब हील होने के बाद देयर इज नो फीलिंग, दैट इज अ गुड वन. फिलहाल योर फेवरेट गाना अमान फ्रॉम लव आजकल ना टुडे वी सेलिब्रेटिंग द मूवी
2: इट्स ये दूरियां.
1: अब हो गया ना द हील फील सब ये दूरियां. अब तो कैन वी ट्विस्ट होना चाहिए.
2: 2-3 और हुए ना.
1: ये देखो ये अपने आप ही इम्तियाज अली ये पूरी मूवीज बना रखी हैं. चलो लेट्स प्ले ये दूरियां राइट हियर ऑन बिग 106.2 सेलिब्रेटिंग लव आजकल. थैंक यू अमान.
2: वेलकम.
1: बाय.
2: टेक केयर. बाय.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. We are bringing in the weekend. Mansi, and joining us right now is Neeta. And she told me, "Haan, maine movie ka naam pehchan liya. Love Aajkal Hai, Love Aajkal Hai." So I asked Neeta, "Neeta, aapko hua tha college mein, school mein pyar the?" She said, "Nahi, nahi, nahi. Maine bahut seedhi zindagi jo hai wo bitai hai. To hume jinko ho gaya tha, hamari tedi hai."
2: Nahi, aap galat samjhe. Acha, main Mansi aapko bata do.
1: Haan.
2: Meri just TY BCom khatam hone wala tha. And mera jo bhai hai, jo yahi pe Dubai mein hi rehta hai.
1: Okay.
2: To uski engagement thi. तो उसकी एंगेजमेंट में जो मेरे अभी करंट हस्बैंड है ना,
1: हाँ, करंट हस्बैंड,
2: मेरी शादी को 21 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट. अभी उनका क्या हो गया था कि वो एंगेजमेंट में आए थे मेरे भाई की.
1: अच्छा.
2: और वो उनके फ्रेंड थे.
1: हाँ जी.
2: तो वो लव एट फर्स्ट साइट था. एंड आफ्टर 10 डेज आई गोट एंगेज टू हिम.
1: तो लव मैरिज ही है ना फिर नीता?
2: हाँ, लव मैरिज है.
1: तो आप मुझे से क्यों बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमें कोई लव नहीं हुआ? उनको तो आपसे हो गया ना?
2: नहीं, दोनों को हुआ एक्चुअली. और वो ऐसा था कि मतलब वो जो एंगेजमेंट थी सुपर हैंडसम. तो उस पे सारी लड़कियां, उनके पेरेंट्स मतलब लाइन लगाते बैठे थे कि इस लड़के से थोड़ा मुलाकात हो जाए. He was crazy for me.
1: Oof, तो ये तो है ना सॉलिड लव स्टोरी. ये तो रोमांस है टू अनदर लेवल के, जिसके पीछे सारी लड़कियां वो मेरा दीवाना. कितना मजा आता है ना. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ. लेकिन नीता,
2: आपके साथ 100% होगा.
1: नहीं, नहीं, मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मतलब ना मुझे लव आज करना है, ना कल करना है, ना परसों करना है. मैंने अपनी लव की डायरी बंद कर दी है. ओहो, बट बड़ी रोमांटिक स्टोरी है. तो फिर उन्होंने कैसे आपको प्रपोज किया था?
2: एक्चुअली वो खड़ूस किस्म के थे. तो ही वॉज वेटिंग क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं, देखता हूँ मुझे कौन सा ऑप्शन पसंद आता है. बट नजर मेरे पे ही थी. एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉज अबाउट टू गो फॉर हिज फ्लाइट बिकॉज ही वॉज स्टेइंग इन दुबई. तो जब वो जा रहे थे एयरपोर्ट पे, हम लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए, तभी भी वो कुछ नहीं बोल रहे थे. एंड देन उसके बाद में सडनली पता नहीं क्या हो गया. So he hold my head on the airport, Mumbai airport.
1: Oof, very filmy.
2: And then he bent down to his knee.
1: Oh.
2: And he proposed me. मैंने हाँ बोल दिया. और फिर उसके बाद में उन्होंने फ्लाइट भी बोर्ड नहीं की. एंड इन नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट हो गई. एंड देन ही केम हियर.
1: ये देखो, इन्होंने शुरुआत तो ऐसी की थी. नहीं नहीं, बड़ी सीधी जिंदगी इनकी तो. फुल शाहरुख खान यश चोपड़ा रोमांस है यार.
2: मानसी, हुआ क्या, मेरे गाड़ी में ना मेरा कलीग बैठा हुआ था. अब उसके सामने मैं कैसे बोल रही
1: अच्छा, इसलिए झूठ बोल रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. पर ये कहानियां तो सुनाने वाली है नीता. मैं कह रही हूँ उस कलीग्स को सुनाओ, कलीग्स के रिश्तेदार को सुनाओ. आज के जमाने में कहाँ ऐसी मोहब्बतों की स्टोरियां होती हैं.
2: मैं लॉ फर्म में काम करती हूँ.
1: ओह माय गॉड,
2: ये ऐसी है तो फिर वो मेरा
1: प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है. और प्यार तो लॉयर्स को भी करना अलाउड है, और आपने किया है. पर बड़ी अच्छी लगी यार मुझे आपकी लव स्टोरी. ये तो इम्तियाज अली की लव आजकल से भी दो गुना आगे है. अरे मुझे आपकी लव स्टोरी सुनने का मौका मिला. और सब सुन रहे हैं इस वक्त, जो आप कलीग्स छुपा रहे थे ना, अब तो सब लोग सुन रहे हैं. तो आई थिंक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है.
2: थैंक यू.
1: प्यार करो तो नीता, क्या नाम है हस्बैंड का?
2: प्रियेश.
1: प्रियेश की तरह और नीता की तरह करो, वरना प्यार ही मत करो. मैं कहती हूँ
2: थैंक यू.
1: हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू सो मच. चलो बाय
2: बाय. थैंक यू.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Hello.
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
2: Hey.

0: 2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: It is still 38. 8:13 पर भी 38 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 34. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 63% पर.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Feel.

0: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: फ्राइडे की शाम है, ग्रेट न्यूज. अगर आप JLT में रहते हैं, यू वर्क देयर, प्रॉब्ली आपके ऑफिस वहां पे हैं, यू विजिट JLT ऑफन. रेसिडेंट्स, एम्प्लॉयज एंड विजिटर्स इन जुमेरा लेक टावर्स विल नाउ बी एबल टू ट्रैवल अक्रॉस द नेबरहुड, दैट इज डिफरेंट क्लस्टर्स, ऑन अ न्यू फुल्ली इलेक्ट्रिक बस सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज द 1st of August. इट इज कॉल्ड द JLT लिंक. ये जो सर्विस है, इट विल रन ऑन टू रूट्स कवरिंग क्लस्टर्स फ्रॉम A to Z. And of course, it will also connect different parts of JLT with the DMCC metro station and the Sobha Realty metro station. So, bahut hi convenient, bahut hi easy ho jayega for everyone who works and who lives in JLT from one cluster to the other. Ab JLT mein meri bahut close friend rehti hai. I love that place. But the only problem is, weekend pe kabhi bhi JLT mein parking hi nahi milti hai. Yaar, I so want to go there and experience this electric bus. But unfortunately, I don't stay in JLT and wahan parking milna bahut mushkil hai. Filhal milega brand new version of this 90s ka gana. Matlab, aajkal ke bachche inhe chatpate gaane kehte hain. Hum inhe gaane kehte hain jo 12 baje ke baad har house party mein mahol banate hain. Original gana Karan Arjun se recreate kiya hai Tanish Bagchi ne. Right here on Big 106.2, bringing in the weekend. Main hoon Mansi.

इससे पाछा इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: InsurersMarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: नहीं, ये तो मुफ्त है.
2: गुड, चलो फोन लगाओ.
0: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: एंड इसी के साथ एक और हफ्ते की समय समाप्ति की घोषणा, फाइनली द एंड ऑफ जुलाई. टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय, बट डू नॉट फॉरगेट, आई एम गोना कीप यू कंपनी टुमारो विद द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक, बिग बॉलीवुड काउंटडाउन 4 से 6. सो आप यहीं रहिएगा, एंड यहां से जाने के बाद मैं क्या करने वाले हैं आपको पता है. आई हैव माय शोज लाइंड अप फॉर द वीकेंड. आई हैव अ वेरी पैक्ड वीकेंड. देयर आर टू शोज बिकॉज यू नो आई एम ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तानी ड्रामास दैट आई रियली नीड टू स्टार्ट. एंड ऑलमोस्ट जो है 6-7 एपिसोड्स निकल चुके हैं उसके, तो वो मुझे शुरू करना है. लॉकअप आई एम करेंटली ऑब्सेस्ड विद. मुझे मुसाफिर कैफे भी देखना है. बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ मैं इस वीकेंड. वैसे आपका जो भी प्लान है, प्लीज स्टे इन टच ऑन आर इंस्टाग्राम विच इज बिग 106.2 का इंस्टा हैंडल 106.2 बिग FM. यू कैन से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड. एंड वीकेंड पे मेरी तरह इफ यू लव डूइंग नथिंग देन प्लीज इंजॉय डूइंग नथिंग, क्योंकि पूरे हफ्ते हम इतना कुछ करते हैं. आई थिंक सैटरडे एंड संडे कुछ ना करना इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर फिजिकल एंड आवर मेंटल हेल्थ. एंड इसी ज्ञान की बात के साथ लीविंग यू विद

Big 106.2. That's my song by E. And.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
2: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आप चुम्मे को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

सबक खाक बराबर मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर पर तेरे आगे।

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग जेल brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. aap sun rahe hain Big 106.2 the beat of Bollywood।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Night Shift. All your favorite music. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जिहा, किसे छीमे सप दे डंग वर्गा, आज दिन चढ़िया तेरे

Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Big 106.2, the beat of Bollywood.